0: एक चीज के लिए एक आदमी अमूल्य हो जाते हैं, जिसकी मोल नहीं, तोड़ मोल नहीं होती, और ये चीज हमेशा खुदा के घर से आता है। वो चीज थी मुकेश की आवाज की टिम्बर, जिसका वो धनी था। वो टिम्बर किसी की आवाज में मुझे और सुनाई नहीं दी।
1: भाई और बहनों, ये है मेरी जिंदगी का पहला गाना।

I have been a great admirer of this wonderful person, Mohammed Rafi. मैं हमेशा सोचता था कि भाई ये ऐसे टैलेंट बहुत रेयरली मिलता है, बहुत रिस्पेक्ट में मैं करता था उनको। रफ़ी साहब हमारे हिंदुस्तान के संगीत जगत में मेल सिंगर की हैसियत से सबसे बड़ा गाने वाला है।

चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल, छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल। चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल, छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल। चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल, छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल।

वर्दी पहनी चूहा ने, मेंढक बैंड बजाते हैं। वर्दी पहनी चूहा ने, मेंढक बैंड बजाते हैं। तितली के रथ पर बैठे लड़ने भिड़ने जाते हैं। हर कदम पर चुन्नु मुन्नु मिठाई खाते हैं। चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल छिड़ी।

ने चींटी के पर में हाथी सारे बांध दिए, नन्हे चींटी के पर में बैलूनों की छतरी से उतरे परियों के घर में, फिर किस

अब से मुर्गी पालेगी, बच्चे काली बिल्ली के। अब से मुर्गी पालेगी, बच्चे काली बिल्ली के। लड़ना भिड़ना बात बुरी, कहे से आने दिल्ली के। क्यों वो गोली खाए पाए जो लड्डू तिल्ली के। चली लड़ाई भारी रे, चल तलम तम चलम चल, चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल।

अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां हैं उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 फ्रागें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl 15 vragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

ये हुस्न भी जवान है या एंड दस इश्क अभी बाकी है नाउ तखवना दे इस मैशुका सॉन्ग ओके सोनी हियर लेट्स लीचर.

उजाला रेडियो डीएबी प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते ओ तो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो।

देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ। तुम भी चलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से, कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ। तुम भी चलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।

0: कुछ कहो भी हमसे लौट ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे बन के न चलिए तन के न चलिए, कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
1: देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
0: हाय

गीत आप सुने सोनू निगम की आवाज में, फिल्म का नाम अग्निपट और ये है उजाला रेडियो। सुनने वालों, आज कुछ इन दिनों के गीतों लेकर के हम हाजिर हुए हैं।

फिसल जाए अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। अलका जी एंड अरिजीत सिंह फ्रॉम तमाशा, आप उजाला रेडियो तो जाने हैं। तो अगला गीत फिल्म दे दे प्यार दे से।

मैं याद आऊं तो चले आना चले आना। अमाल मालिक और अरमान मालिक की आवाजों में गीत को आप सुने। विल टू कॉन्टैक्ट मेट ओजाला रेडियो, बेल दन टाइडेंस कंटोर यूरन 020-409-0807 of stuur een mailtje naar info@ojala.nl.

प्रीतम और अरिजीत सिंह की आवाजों में आप सुने ऐ दिल है मुश्किल, फिल्म का नाम। उजाला रेडियो पर आप सुने हैं सवाल साल तय तो।

से क्या हो गए देखते देखते, आतिफ असलम की आवाज में आप सुने। मोई लगे है तो ब्लेफ दान लुस्तर।

Ja, होश ना खबर है तुमसे मिलने के बाद दिलबर नेहा कक्कर एंड धवानी भानुशाली से आप सुने फिल्म सत्यमेव जयते से।

के दिल दिया गल्ला। आतिफ असलम, फिल्म का नाम टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है। अब अगला गीत के तरफ हम चलते हैं।

0: तुम आंखों में तुम अरमान मालिक और देखे तो रोशक कोहली एंड बप्पी लहरी से आप सुने फिल्म चीट इंडिया से
1: कहना है जो
0: त्रोवंस
1: जाने
0: यू लिसन नोक्सेस नार उजाला रेडियो तू जाने है तो

एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। दर्शन रवल एंड रोशक कोहली से आप सुने। एक बैंड फन उजाला रेडियो, एंड उजाला रेडियो इज फन यो।

इतना सोना रब ने क्यों बनाया? ए आर रहमान एंड अरिजीत सिंह फ्रॉम ओके जानू।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, के कर साथ तू ओतो में घूमे है, और के कर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू

भी कहानी, फिल्म का नाम भी हमारी अधूरी कहानी, गीत के गाने वाले अरिजीत सिंह के साथ जीत गंगुली। उजाला रेडियो है ये। हम लोगों का तार का नंबर है एडमिनिस्ट्रेंसी का तार का नंबर दफ्तर के समय तैदंस कंटोर यूरन 020-409-08-07, of je stuurt gewoon een mailtje naar info@ujala.nl en dan komt het voor elkaar.

अरिजीत सिंह एंड प्रीतम, इन दोनों से आप सुने उजाला रेडियो पर सुनने वालों। और अब आतिफ असलम हिस्सा लेंगे।

आतिफ असलम की आवाज बदलापुर फिल्म से निकाला हुआ गीत आप सुने। उजाला रेडियो है ये, तू जाने है तो

आतिफ असलम की आवाज में कुछ इस तरह मोई तो 20 साल मोई यावेल अगला गीत मोहित चौहान की आवाज में एंड या नोक्स्टेस उजाला रेडियो है

दिल मेरा तेरा होने लगा। मोहित चौहान, फिल्म पहाड़गंज से। ए मैं हूं विजय और मैं हूं उजाला रेडियो का, और उजाला रेडियो है आपका।

और नजर ना लग जाए जानू एश्किंग एंड सचिन जिगर से आप सुनिए स्त्री से फिल्म स्त्री।

ओ साथी आतिफ असलम की आवाज और फिल्म बागी टू ons telefoonnummer tijdens kantooruren 020 409 0807.

एक गाना हम आपको सुनने को जा रहे हैं. दिस हो रही है, दिस सुनने में हो रही है फॉर ऑल इन पोर्टुगल ऑफ इन ब्राजीलिया. आज इन इन एक दोरपू में तुझे ये थे इस वक्त गानों तो सुनिए. इट इज एक्चुअली रीमिक्स, मगर वेल गेजेलिग नंबर.

बोली तो कनवा के नमो हैगा इतना ना मुझसे तू प्यार भरा। उजाला रेडियो पर आपने सुना है लता मंगेशकर एंड तलत महमूद के आवाज में पेश किया गया है आप सभी सुनने वालों के लिए प्रोग्राम का नाम कॉफी चाय मेदक शो। और आज की बात यह है, सवाल ये मैं आपसे करना चाहता हूँ। द फ्राग फॉर वंडाग इज व्हाट गिव यू रस्ट ऑफ एन ड्रुक दग, व्हाट गिव यू रस्ट ऑफ एन ड्रुक दग। Een goed gesprek met iemand die je dierbaar is. Een wandeling in de buitenlucht. Of gewoon 5 minuten met een warme kop koffie of chai. Nou ja, die vraag mag jij zelf beantwoorden. Dus wat geeft jou rust op een drukke dag? Koontje toch een rust deze keer, als je de hele dag bezig bent geweest. Je bent druk. Een goed gesprek met iemand die je dierbaar is. Een wandeling in de buitenlucht. Of gewoon 5 minuten met een warme kop koffie of chai. Yehu jalas, koffie chai. Program bij Hoe Lloyd Mahabir. Sony.

यू आर उजाला रेडियो, यह है सुन वालो। और कमर्शियल के बाद में आप सुन लेना, अच्छे से अच्छे गाने उजाला रेडियो के जरिए पेश किया जाएगा।

हैं बिनकोट रावर, तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं सुन वालों, तो दीजिए आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 vragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो। दिस ga jij binnenkort trouwen? Door wie baan honen wel het, door shadi honen wel het? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

जाने ना तू अली खान। हाँ, अली खान की आवाज में आप सुने और ये उजाला रेडियो है। इन्फॉर्मेशन के लिए हमेशा उजाला.nl।

जाना, जिंदगी से नहीं जाना, कभी नहीं जाना, जाना तुम नहीं जाना। एंड उजाला रेडियो से दूर भी कभी नहीं जाना।

0: You are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Mukesh ji ki awaaz ka main bahut bada fan hoon. Unki awaaz ki visheshta ki wo jab gaate hain to aisa lagta hai ki koi bahut sachcha imandar bhula bhara aadmi ga raha hai. Aur har geet ko aise pyar se gaate the. Lagta tha ki unke liye hi banaye gaye. Kabhi lagta hai ki राज कपूर जी मुकेश जी के लिए बने हैं, कभी लगता है कि मुकेश जी राज कपूर जी के लिए बने हैं।

0: उजाला सोना चिरैया चिरैया चिरैया चिरैया।
1: यहीं से उजाला रेडियो पर आप सुनेंगे एक विशेष प्रोग्राम आप ही के लिए जो बनाया जा रहा है।

0: 6:13 गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, ये उजाला रेडियो है और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। तहदिल से स्वागत है आप सभी को, हम स्वागत करते हैं तहदिल से। आप जहां पर भी होंगे, जिस हाल में आप होंगे, एक शुभ रात्रि कहते हुए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आप सभी प्रिय सुनने वालों को रतन का प्यार भरा नमस्कार और अदापर से। बुधवार है आज 10 तारीख जून साल 2026 और आपका सेवा फिर एक बार करने चले आए लेकर प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर। ये प्रोग्राम के साथ आप सभी को संगीत जो इसमें शामिल होते हैं, उन संगीतों के साथ, उन नगमाओं के साथ, उन सॉन्ग्स के साथ आपको वापस हम ले चलते हैं हमेशा पुरानी यादों की ओर। और आज फिर एक बार हम और आप मिलकर वो कुछ पुराने यादें जो किसी न किसी नगमा से जुड़े हुए हैं, हम और आप मिलकर फिर ताजा करेंगे। शुभरात्रि अनहील खुनावंत। बहुत जोर तोड़ से बारिश हो रहे हैं इन दिनों, उम्मीद और आशा करते हैं कि वीकेंड तक ये हल हो जाएंगे और फिर खूबसूरत मौसम लौट के आएंगे। बस हम आशा कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से भी हो, जैसे भी हो, आप भरपूर एंजॉय करें मेरे प्यारे सुनने वालों। और आज मेरे प्यारे सुनने वालों प्रोग्राम फिर हम सजाएंगे बनाएंगे 5वीं बार एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब जी का प्रोग्राम हम फिर एक बार सजाएंगे। इतनी पॉपुलर है ये और बहुत सारे पॉपुलर मूवी में इन्होंने काम किए हैं, तो हाजिर है कि इनकी मूवीज में कुछ पॉपुलर सॉन्ग्स भी होंगे। तो लगातार 4 प्रोग्राम हमने सजाए हैं, बनाए हैं और आप सभी ने सुने हैं और बेहद भी एंजॉय किए हैं। आज 5वीं है और आज बहुत सारे खूबसूरत गाने फिर एक बार प्लेलिस्ट में सजा रखा है मैंने। आज देखा तो मैंने सोचा कि वाओ, 4 प्रोग्राम हम बना चुके हैं और फिर भी इतने सारे गाने हैं बाकी जो हम आप तक पेश करना चाहेंगे। Wat ik weet is dat we nog 2 programma's gaan maken, aaj or 17e, or shayad ek aakhri 24 tarikh joon ko. To dil tham ke baithega mere pyare sunne walo, abhi hum program ko aaram karenge. Filhal to program aaram karne se pehle aapko bhi hum itla de ki hamari ye program ke dauran agar WhatsApp ke zariye baatein karna chahoge to ye mumkin hai, aap Ujala Radio ke studio jahan main hoon is waqt, स्टूडियो रोटरडम में लाइव एंड डायरेक्ट जहां से ये प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं, आप ऐप कर सकते हैं 020-363-0000 उजाला रेडियो का स्टूडियो का व्हाट्सएप है। और रहे आपके कारमाएं, जैसे कि फरमाइश से जरूरी खबरें, मौत की खबरें, जानकारी, इंफॉर्मेशन, जो भी आप करवाना चाहेंगे, आप पूछताछ करना चाहोगे, तो आप दफ्तर को भी तार कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। दफ्तर को आप तार कर सकते हैं सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे तक, और वो भी दफ्तर के तार पर 020-409-0807 या तो आप लगातार 24 घंटे 7 दिन किसी भी पल किसी भी वक्त जब भी आप चाहेंगे आपके हर एक कामकाज के लिए आप मेल कर सकते हैं info@ujala.nl। मेरे प्यारे सुनो, आज का ओपनिंग सिलेक्शन की ओर हम आपको ले चलेंगे अनजान साहब जी का लिखा हुआ आज गीत मैं पेश करूंगा ओपनिंग सॉन्ग किशोर कुमार की आवाज में। 1973 का फिल्म बनारसी बाबू से निकालेंगे मूवी का टाइटल सॉन्ग, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी किशोर कुमार।
1: अरे मेरे यार,

बुरे भी हम और भले भी हम, लेकिन समझियो ना किसी से कम। हमारा नाम बनारसी बाबू, हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की आवाज और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। अनजान का लिखा हुआ नगमा 1973 निहत इंद्रियन से इवन तक का मूवी बनारसी बाबू से हमने निकाले हैं मेरे प्यारे सिनेमालो शंकर मुखर्जी, जिसका डायरेक्टर है, और देव साहब जी ने ये फिल्म में डबल रोल, हाँ डबल रोल ये पूछ रहे हैं, सच है, हाँ सच है, सच है, अदा किया है डबल रोल ये मूवी में, और राखी गुलजार भी मूवी में है, जोगिता बाली जीवन साहब जी और मनोरमा। उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सुनने वालों, 7 मिनट बाकी है सारी 6 बजने में, और मैं हूँ रतन राम दुलारे पांडे। उजाला रेडियो के स्टूडियो रतनाम से फिर एक बार मौका मिला है आपका सेवा करने का, और पेश कर रहा हूँ प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर, आज 5वीं बार एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब जी के प्रोग्राम हम सजा रहे हैं, और नगमाएं कुछ ऐसे हैं जो आपको ले चलेंगे, कुछ पुराने यादें जो है इन संगीत से जुड़े हुए हम और आप आज फिर एक बार मिलकर ताजा करेंगे। मुझे तो जैसी ये गीत अभी हुआ है, याना ब्रिंगत मना अबरा ब्रोकी, सूरीनाम छोटा था, और द पारल में ये मूवी मैंने देखा, और मुझे मालूम है अभी कि हम किस तरह से वहाँ फिल्म का ट्रेलर आते थे STVS पर, और मेरे बड़े भाई काम करते थे द पारल में, पोस्टर ले आते थे हर एक मूवीज का, तो हम किस तरह से छोटे छोटे बच्चे वहाँ ब्यूटी में हम लोग फिल्म के ट्रेलर, या अगर हम फिल्म देखें तो फिल्म हम उनके जो कुछ सीन्स हैं हम किए करते थे, और सभी होफ्राओ बनना चाहते थे एक ओक, और गाने मैं भी गाना चाहता था, बुरे भी हम भले भी हम। ब्यूटीफुल मूवी बनारसी बाबू, बहुत दिन नहीं देखा, देखना फिर पड़ेगा, क्योंकि संगीत जो इस मूवी का है बहुत खूबसूरत है मेरे प्यारे सुनने वालों। कल्याण जी आनंद जी की म्यूजिक मुझे भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, और इनका प्रोग्राम हमने भरपूर सजा चुके हैं, और प्लानिंग में है सोमवार के बाद आप सभी के लिए बनाने का, और वो भी जहाँ तक मेरा ख्याल है 6 या 8 प्रोग्राम होंगे कल्याण जी आनंद जी का जो हम सजाने वाले हैं, और फिर आप देखेंगे कि कितनी हिट म्यूजिक कल्याण जी और आनंद जी ने भी दी है। मदद इस फुलाथर आपको ले चलते हैं अगले अगले अगले मूवी की ओर, और हम बढ़ चलेंगे 73 से 77 नीहतीन सीवनन सीवन। अरे रूठे हैं तो मान जाइए या मान जाएंगे, गीत का बोल है एक रूठना मनाना सॉन्ग, ये गीत जो है किशोर कुमार फिर एक बार सेवा में गीत गाएंगे। वंस अगेन कल्याण जी आनंद जी का लिखा हुआ नगमा है, और संगीतकार तो कल्याण जी आनंद जी है, लेकिन गीत लिखने वाला द ग्रेट आनंद बख्शी जी।

सारे रूठे हैं तू मान जाएंगे, लेकिन तुम कहां जाएंगे तेरे पीछे पीछे आएंगे। किशोर कुमार की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों, ये रूठना मनाना सॉन्ग इन्होंने गाए हैं, आनंद बख्शी जी ने लिखा और संगीतकार कल्याण जी अनान जी। 1977 निहतिन सेवन सेवन तक का मूवी कालाबास से हमने नगमा को निकाले। अशोक रॉय जिसका डायरेक्टर देवानंद साहब जी ने सीनत अमान के साथ मूवी में काम किया है, द ग्रेट प्रदीप कुमार देव कुमार, आसरानी जी, एके हंगो, सुजीत कुमार, हरकुलस, इन सभी ने ये मूवी में भी काम किया है। उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सिनेवालो। हर एक इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए, टार के नंबर, ईमेल एड्रेस के लिए और भी बाकी जानकारी ले अगर आप चाहते हैं, चेक www.ujala.nl ऑफ अंडरसोंस सोशल्स। हाँ जी, एक पहेली है तू, हाँ नार नवेली है तू, एक खूबसूरत गीत, ये भी आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ है। वंस अगेन किशोर कुमार अब की बार नाइटिंगेल आशा जी के साथ मिलकर गीत गाएंगे। आर डी बर्मन के साज और संगीत पर, राहुल बर्मन के साज और संगीत पर फिल्म जो है मेरे प्यारे सुनो लो 74 का निहतिन फिर और फिल्म का नाम है हीरा पन्ना।

0: है तू,
1: एक पहेली है तू, हाँ नार नवेली है तू, जितना मैं सुलझाऊं। किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी की आवाजें, मेरे प्यारे सुनने वालों, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत, ये दोनों ने मिलकर गाए हैं, आरडी बर्मन राहुल बर्मन की साज और संगीत पर। हीरा पन्ना फिल्म का नाम, हीरा पन्ना मेरे प्यारे सुनने वालों 1974 का फिल्म है, नीह तीन फिर और खास बात है ये मूवी का कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर और एक्टर तीनों ही एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब जी सिनेमा के साथ इन्होंने ये मूवी में काम किया है और जिन पर ये गीत भी पिक्चराइज किया गया, राखी गुलजार मूवी में है, रहमान साहब जी भी है, धीरज कुमार जीवन, मनमोहन ए के हंगल, सुधीर पैंथल, कन्हैया लाल या ब्यूटीफुल। अगर आप व्हाट्सएप करना चाहोगे, बातें करना चाहोगे व्हाट्सएप के जरिए स्टूडियो में, तो ये मुमकिन है। मैं देखता हूँ कुछ लोगों ने ऐप किए हैं, जैसे कि सुशीला चंद्रिका सिंह जी एट अम्सलफेन, आइलिन जी एट हार्लेम, हिरेंद्रू और चित्रा जी एट मार्सब्रुक, आईफी जहांगीर एट अम्सटरडम, मार्खड़ी जी एंग्लम मुतिक से है द गोल्डन गर्ल्स जो इस वक्त नीदरलैंड में नहीं है लेकिन एस्टेपोना में है, मार्खड़ी जी, मालती जी, बेया जी और फेमिया, आप सभी को डंकीवेल दिल से धन्यवाद, शुक्रिया हम कहते हैं। ले चलते आपको बार द 60s की ओर, फिल्म का नाम शराबी और ये फिल्म जो है मेरे प्यारे सुनने वालों 1964 का है, नीहतीन फीरन सिस्तख, सावन के महीने में एक आग सी सीने में, गीत रजिंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ, रफी साहब जी गाएंगे और मदन मोहन संगीतकार। पेश करता हूँ खूबसूरत गीत हियर ऑन यू आर बैक टू द फ्यूचर में।

मस्ती भरी गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, सावन के महीने में एक आग सी सीने में, रफी साहब जी की आवाज। मेरे प्यारे सुनने वालों, राजेंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ गीत रफी साहब जी ने गाकर सुनाए है मदन मोहन के साज और संगीत पर। 1964 निगेटिव फिर अंसेस्टर का मूवी शराबी से हमने ये नगमा को निकाले। राज ऋषि जिसका डायरेक्टर देवानंद साहब जी, मधुबाला ललिता पवर और कौन है देसी ईरानी का एक फिल्म जिसमें राम मोहन भी है और सुलक्षणा। ठीक पौने सात का वक्त है मेरे प्यारे से नॉलो स्टूडियो क्वार्ट फोर सीव और आप सुन रहे हैं बैक टू द फ्यूचर। मैं हूं आपका यारो का यार रतन राम दुलारे पांडे और यू आर के स्टूडियो रतनाम से ये प्रोग्राम एकदम लाइव आप तक पेश हो रहे हैं। एक शिकवा शिकायत सॉन्ग की ओर हम आपको ले चलेंगे। रफी साहब जी वंस अगेन गीत गाएंगे और वो भी एस दे बर्मन, सचिन देव बर्मन के साज और संगीत पर। एक मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ गीत जो हम निकालेंगे, 1963 का मूवी तेरे घर के सामने। तेरे घर के सामने ये नगमा पॉपुलर सॉन्ग हीरो निवार

सुन ले तू दिल की सदा, प्यार से प्यार सजा। गलजन पद्माश्री मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज, और वो भी मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ गीत रफी साहब।

1963 नी खतिंद्रीन सिस्तख का फिल्म तेरे घर के सामने से हमने नगमा को निकाले, एक फिल्म जिसका प्रोड्यूसर और एक्टर दोनों ही एवरग्रीन सुपरस्टार देव साहब जी, डायरेक्टर इनके छोटे भाई विजय आनंद है, मिस्टर गोल्डी आनंद। और देव साहब जी ने ये फिल्म तेरे घर के सामने में काम किया है नूटन जी के साथ, ओम प्रकाश जी, राजेंद्र नाथ, जिंकी दास, हरिंद्र नाथ चौपाधे और मैं देखता हूं क्या नाम है, रशीद खान भी है, प्रतिमा देवी। मुमताज बेगम थैंक यू मुमताज बेगम। इफ यू स्पीक वन अदर डेट, हम आप तक गीत पेश कर रहे हैं लेकिन घड़ी का भी ख्याल करना पड़ता है। एक गीत जो हमने तैयार करके रखा है मेरे प्यारे सुनने वालों, ये भी 1963 निहत इंद्रियन से सख का एक मूवी का सॉन्ग है, एक डर भरा गीत है, नयन शर्मा जी ने लिखा और दादा मन्ना डे जी गीत गाकर सुनाएंगे, वो भी जयदेव के साज और संगीत पर। ये फिल्म 1963 का जो है, फिल्म का नाम है किनारे किनारे और चले जा रहे हैं, गीत का टाइटल है, जो दादा मन्ना डे जी गाकर सुनाएंगे।

चले जा रहे हैं और वो भी किनारे किनारे। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों। और वैसे तो ये दर्द भरे गीत में गिना जाता है, दादा मन्ना डे जी की आवाज और नयन शर्मा जी का लिखा हुआ नगमा, जयदेव के साज और संगीत पर दादा मन्ना डे जी ने गीत गाकर सुनाए हैं। 1963 निहतेंद्रियन सेस्तक का फिल्म किनारे किनारे से हमने ये नगमा को निकाले। और फिल्म मेरे प्यारे सुनो वालों, प्रोड्यूसर भी नयन शर्मा जी है, बड़े भाई देव साहब जी का चेतनानंद डायरेक्टर। और देव साहब जी ने ये मूवी में मीना कुमारी जी के साथ काम किए हैं। सुंदर दादा भी फिल्म में है। इस घंटे का आखिरी गीत आप तक पेश करने जा रहे हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, इस घंटे का एक आखिरी गीत। इस आखिरी गीत के बाद 7 बजे की इश्तिहारों की ओर हम बढ़ चलेंगे। और इश्तिहारों के बाद आप सभी के सेवा में फिर हम हाजिर रहेंगे लेकर ये प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर। देव साहब जी, देवानंद साहब जी, एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब जी, इनकी मूवीज से इन पर पिक्चराइज किया गया खूबसूरत नगमाएं हमने आज फिर एक बार और वो भी 5वीं बार प्लेलिस्ट को सजा रखा है और नगमाएं निकाल निकाल कर आप तक पेश कर रहा हूं। बहुत जल्दी हम चल पड़े द 60s की ओर और अभी ब्रेक के बाद भी द 60s के कुछ गाने आप तक पेश करेंगे। उसके बाद में चलेंगे द 50s की ओर और अगर मौका मिला तो हम वापस चले आएंगे द 70s की ओर। ठीक है, आखिरी गीत जो पेश करने जा रहा हूँ फ्रॉम द मूवी असली नकली, ये भी 1963 का है, रफी साहब जी शैलेंद्र जी का लिखा हुआ गीत, शंकर जयकिशन संगीतकार है। इस गीत के बाद ब्रेक मेरे प्यारे से नॉलो, ब्रेक के उस पार मिलते हैं आप सभी से।

कहीं जनाब को तू मेरा इंतजार तो नहीं। एक फिल्मी कवाली हमने आप तक पेश किया है, किशोर कुमार लता जी की आवाजें, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत, दोनों ने मिलकर गाए हैं और वो भी लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल के साथ और संगीत पर। ये था फिल्म अमीर गरीब का एक नगमा, फिल्म इतनी हितिनफीर रंसी वंत खूनी सोचोहटर, मोहन कुमार का प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया हुआ ये फिल्म है, जिसमें देव साहब जी ने काम किया है हिरनी जैसी आंखें वाली ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी के साथ, प्रेमनाथ तनुजा, सुचित कुमार, नाजिमा, जूनियर महमूद सुलक्षणा, मोहन छोटी बिरबल, ब्यूटीफुल उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सुनने वालों। मैं हूं आपका यारों का यार रतन राम दुलारे पांडे और बैक टू द फ्यूचर आप सभी के सेवा पेश कर रहा हूं। इस हफ्ते का आखिर या ये प्रोग्राम सजा रहा हूं। कल रात्रि को दिल की आवाज नहीं पेश करेंगे और आने वाले शनिवार भी हम नहीं रहेंगे लेकर प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर। आज हूं और फिर मैं अगले हफ्ते बुधवार वुनसाख 17 को फिर वह हाजिर रहेंगे लेकर ये प्रोग्राम। एंड दन बेने कर वेल दोन द डख में दिल की आवाज अलीन सात डख वीर नीत द ए द सॉरी द ट्वेंटी। Dus vandaag ben ik er en dan ben ik er volgende week woensdag weer en donderdag. Aur uske baad mein 24 ben ik er, 25 en 27 juni. Ghar ki taraf dekhu to dheere dheere dheere ho rahe hain mere pyare suno walo. Bijna 16 minuten over de klok van 7. To hum even bhatak gaye the. आपको वापस ले चले गए द 70s की ओर, लेकिन ब्रेक से पहले आप सभी से कहे थे कि द 60s में हम रहेंगे और उसके बाद में द 50s में हम चले जाएंगे, और रहा वक्त तो हम फिर वापस चलेंगे द 70s की ओर। ठीक है, तुम तो दिल के तार छेड़कर तार दिल के छेड़कर क्या कर डाला, ये रोमांटिक सॉन्ग द मैन विद द गोल्डन वॉइस ऑफ इंडिया तलत महमूद जी की आवाज में आपको सुनाने जा रहा हूं। शैलेंद्र जी का लिखा हुआ नगमा है और जिसका संगीतकार शंकर और जय किशन, 1962 का फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा का नगमा पेश करता हूं। और जहां तक मेरा ख्याल है फोकस में लता ओक में, maar ik weet het niet zeker.

तो दिल की तार छेड़कर रात भर ओ बेखबर द मैन विद द गोल्डन वॉइस ऑफ इंडिया तलत महमूद जी की आवाज, शैलेंद्र जी का लिखा हुआ ये रोमांटिक सॉन्ग इन्होंने गाकर सुनाए, वो भी शंकर और जय किशन के साथ और संगीत पर। रूप की रानी चोरों का राजा फिल्म का नाम, और ये फिल्म मेरे प्यारे सुनने वालों 1962 का है, निहतिन ट्विन सिस्टर। इसका डायरेक्टर रवल साहब जी है और देवानंद साहब जी, वाहिदा रहमान, हीरालाल, जगदीश राज सुंदर, मनोरमा, इन सभी का फिल्म है। प्रभा जी आइटम सुनाम सिंड्रम टंकी वाला आपके ऐप के लिए, और क्या बना रहे हैं, क्या दिखला रहे हैं मुझे, तू जाने भोजन के समय है इस वक्त, लोग जो काम करते हैं घर आते हैं उन्हें पकाना चाहिए फिर वो खाएंगे। फिलहाल तो जो बुधवार होते हैं हम दौड़े दौड़े चले आते हैं और जो भी है हम खा लेते हैं, और अगर कुछ नहीं है तो हल्दी से कुछ पका लेते हैं ताकि हम कुछ खा लें। और आप बना रहे हैं ताज़ा ताज़ा बहुत लेकर लेकर बारा, और वो भी आम की चटनी। दिमाग खराब कर दिया। और दनहाख शहर में सुन रहे हैं भी प्रोग्राम मिक मिक डंकीवेल फॉर ये अपीयर एंड फॉर ऑफ सेमन। और जो अपने टर्न अपने टर्न में बाग में बैठ कर प्रोग्राम से आनंद ले रहे हैं, अलमेर में तुनी इसरी डंकीवेल तुनी तुनी सॉरी हीरे नुखबोलक, और रहे रहे तो बारिश हो रहे हैं, कभी धूप तो कभी छाओ। एंजॉय। जो इजाजत हो तो एक बात कहूं, अगले गीत का बोल एक नगमा जो नाइटिंगेल आशा जी और द लेजेंड पद्माश्री मोहम्मद रफी साहब जी मिलकर गाएंगे। ये गीत मजरू सुल्तानपुरी जी ने लिखा, एस दे बर्मन सचिन देव बर्मन संगीतकार है। 1962 निहतिन ट्विन सिस्टर का फिल्म बात एक रात की, बात एक रात की से ये नगमा निकाल रहा हूं और आप तक पेश कर रहा हूं, रफी साहब जी और आशा जी।

ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुन वालों, जो इजाजत हो तो एक बार कहूं, बोलो मेरी जाने मन आशा जी और नाइटिंगेल आशा जी और मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज मेरे प्यारे सुन वालों। मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ गीत दोनों ने मिलकर गाए हैं और वो भी एस टी बर्मन के साथ और संगीत पर। सचिन देव बर्मन, फिल्म का नाम बात एक रात की, 1962 का मूवी। देखता हूं कि शंकर मुखर्जी फिल्म का डायरेक्टर, देवानंद साहब जी और वहीदा रहमान का एक फिल्म जिसमें चंद्रशेखर भी है, जूनी वॉकर, असित सेन।

62 से एक साल हम नीचे जाएंगे 1961 फिल्म का नाम माया और माया से गीत निकालेंगे। ये भी मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ है। मेरे प्यारे सुनवालो वंस अगेन रफी साहेब जी, संगीतकार है अब की बार सलील चौधरी। जिंदगी है क्या सुन मेरी जान। मेरे प्यारे सुनवालो ये उजाला रेडियो है लाइफ एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रोहतनाम से आप सुन रहे हैं बैक टू द फ्यूचर। पांचवी प्रोग्राम है आज जो लाइफ एंड डायरेक्ट पेश हो रहे हैं देवानंद साहब जी का यू आर के स्टूडियो रोहतनाम से। एन एच इज इन मिनट फोर हाल्फ रफी साहब जी को पेश करता हूँ सेवा में।

जिंदगी है क्या, सुन मेरी जान, प्यार भरा दिल और मीठी जुबान। दलजन पद्माश्री मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ गीत रफी साहब जी ने गाकर सुनाए हैं, और वो भी सलील चौधरी जी के साज और संगीत पर, माया फिल्म का नाम। और ये फिल्म 1961 का है। नीहति नैनन सिस्टर, मेरे प्यारे सुनने वालों, देव साहब जी का ये फिल्म का डायरेक्टर केशव साहब जी और देवानंद ने ये मूवी में काम किया है। माला सिन्हा के साथ साथ जयंत जो पिता है फन अमजद खान जेंस, और अमजद खान और इम्तियाज खान, सुंदर दादा भी मूवी में है, और आगा साहब जी, ललिता पावर, हेलन। बिन देखे और बिन पहचाने तुम पर तो हम कुर्बान, मोहब्बत इसको कहते हैं और मोहब्बत इसको कहते हैं। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनवालो, शैलेंद्र जी इनका लिखा हुआ, रफी साहब जी वंस अगेन शंकर जयकिशन के साज और संगीत पर। ये भी 61 का मूवी है, नीहति नैनन सिस्टर। जब प्यार किसी से होता है, जब प्यार किसी से होता है से नगमा निकालूंगा, लेकिन मैं देखता हूं कि व्हाट्सएप पर भी है लिस का शारदा और उनके बहनों भी सुन रहे हैं। बहने जो है एक सेंट मार्टिन का पूनम जी और सूरीनाम का अनीता, हिल फिल लॉयसर प्लजीर, बस आप सभी मजा ले। देवानंद साहब जी के नगमाओं के साथ पेश करने जा रहा हूं गीत की, बिन देखे और बिन पहचाने तुम पर तो हम।

देखे और बिन पहचाने, तुम पर हम कुर्बान। मोहब्बत इसको कहते हैं और मोहब्बत इसको कहते हैं। रफी साहब जी की आवाज, मेरे प्यारे सुनोलो शैलेंद्र जी, इनका लिखा हुआ गीत रफी साहब जी ने गाकर सुनाए शंकर जयकिशन के साथ और संगीत पर। जब प्यार किसी से होता है, जब प्यार किसी से होता है, फिल्म का नाम, और ये फिल्म 1961 का है, निहतिन एनन सेस्टर। फिल्म जब प्यार किसी से होता है का प्रोड्यूसर डायरेक्टर नाजीर हुसैन, एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद का फिल्म है। और इन्होंने ये फिल्म में काम किया है आशा परीख जी के साथ, डेकोरेट प्राण, सुलक्षणा, राजेंद्र नाथ, राज मेहरा और ताहिर हुसैन। 10 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, और वो भी 7:30। 3 मिनट ओवर द क्लॉक फन हाल्फ अख। मैं हूं रतन, और फिर एक बार अगर चून किए हुए हैं अब स्वागत करता हूं, शुभरात्रि कहता हूं। जो लोग इस वक्त काम पर हैं, सुन रहे हैं, तो दिल लगाकर काम करना एंड एंजॉय द ब्यूटीफुल ओल्डीज। और जो लोग मोटर कार में, ट्रेन में, टैक्सी में, पता नहीं आप क्या क्या चला रहे हैं बाहर, कुछ लोग ऐसे भी होते कि फिट्स पर ओर्चस ली के, तो आप सभी को भी हम यही कहेंगे कि संभाल के हिस्सा लेना एंड एंजॉय, एंजॉय यू आर एंजॉय बैक टू द फ्यूचर एंड फॉर ऑल एंजॉय द सॉन्ग्स। जो लोग भी विदेश गए हैं, उजाला रेडियो को अपने साथ लिए गए हैं, और जो लोग विदेश से आए हैं हमारे इस देश हॉलैंड में, स्वागत करता हूं आप सभी को। और फैन फकांसी फोर्डमैन से दी नारद बैतलान से एंजॉय। ये जिंदगी बहुत ही छोटी है, मजा ले। तो आप सभी को भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और ले चलते हैं आपको अगले गीत की ओर। फिल्म का नाम हम दोनों, मेरे प्यारे सिनेमा, एक दर्द भरा गीत है हमारे प्रिय, हाँ जी हमारे प्रिय है ये सही लुधियानवी जी का लिखा हुआ एक नगमा, रवि साहब जी जो गाकर सुनाएंगे जयदेव के साज और संगीत पर। फिल्म का नाम हम दोनों, और ये मूवी 1961 का भी है। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, ऐसा कभी कभी होता है मेरे प्यारे सुनने वालों, आज भी और शायद कल भी होंगे कि हालात पे आपको रोना आ गया, और कभी कभी आपके खुट पे। पेश करता हूं डट भरे गीत हीर ऑन यू आर।

कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। द लेजेंड पद्माश्री मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज और हमारे प्रिय सहीर लुधियानवी जी का लिखा हुआ गीत इन्होंने गाकर सुनाए हैं जयदेव की सांझ और संगीत पर। फिल्म का नाम हम दोनों मेरे प्यारे सुनने वालों 1961 का फिल्म है नीखती नीन सिस्टर। अमरजीत का डायरेक्ट किया हुआ एक फिल्म जिसमें देव साहब जी ने काम किया है नंदा जी के साथ, साधना, ललिता पवार, जागीरदार, रशीद खान, लीला चिटनिस, जगजीत राज भी है और कौन है, प्रेम सागर और रविकंद। 13 मिनट बाकी है 8 बजने में जबकि हम आपको ले चलेंगे अगले पॉपुलर सॉन्ग की ओर जो देव साहब जी पर पिक्चराइज किया गया है। एक नगमा है शैलेंद्र जी का लिखा हुआ और जिसका संगीतकार है एस डी बर्मन, सचिन देव बर्मन। वंस अगेन रफी साहब जी और की जो है खोया खोया चांद खुला आसमां गीत का बोल है। काला बाजार का नगमा और काला बाजार 1907 का मूवी है नीख दिन सिस्तख। पेश करता हूं रफी साहब जी को हियर ऑन यू आर बैक टू द फ्यूचर में।

0: खोया खोया चांद, खुला आसमान आंखों में सारी रात जाएगी। मेरे प्यारे सुनो लो खूबसूरत गीत, पॉपुलर सॉन्ग रफी साहब जी की आवाज में आप सभी ने सुने। शैलेंद्र जी का लिखा हुआ और जिसका संगीतकार थे एस दे बर्मन, सचिन देव बर्मन। काला बाजार फिल्म का नाम और ये फिल्म 1907 का है। नीतिन सिस्तक डायरेक्टर, विजय आनंद प्रोड्यूसर और एक्टर, एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब जी वहीदा रहमान के साथ इन्होंने ये मूवी में काम किया है काला बाजार में, विद नंदा, रशीद खान, विजय आनंद, लीला चिटनिस। मेरे प्यारे सुनो लो, अब वक्त आ गया है कि मैं आप सभी के सेवा में दो आखिरी नगमाएं पेश करूं, उसके बाद 8 बजे के ब्रेक होंगे। दोनों नगमाएं मेरे प्यारे सुनो लो रफी साहब जी और नाइटिंगेल आशा जी गाएंगे। पहला गीत फ्रॉम द मूवी जाली नोट, ये 1960 का एक फिल्म है, राजा मेहंदी अली खान का लिखा हुआ एक छेड़छाड़ सॉन्ग जो रफी साहब जी और आशा जी मिलकर गाएंगे ओपी नैयर की साज और संगीत पर। जाली नोट अजनीन सस्तक शक्ति समेंता साहब जी का एक फिल्म या डायरेक्ट किया हुआ फिल्म है और देवानंद और मधुबाला का एक मूवी। उसके बाद में गीत हम पेश करेंगे फ्रॉम द मूवी 9-2-11 जो रफी साहब जी और आशा जी मिलकर गाएंगे, एक रोमांटिक सॉन्ग मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ और जिसका संगीतकार है सचिन देव बर्मन, फिल्म का डायरेक्टर विजय आनंद और ये फिल्म 9-2-11 देवानंद और कल्पना कार्तिक का एक फिल्म है। ये दोनों नगमाएं आगे पीछे सेवा में आपका पेश करता हूँ।
1: आँख नजर चेहरे से हटा हमको न सता, अरे जा चल जा,
2: जाती है किधर दामन न छोड़ा, ये करती है

0: नहीं।
1: मना जनाब ने पुकारा नहीं, और क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ ये छेड़छाड़ रोमांटिक सॉन्ग इन्होंने गाए हैं। एस जी बर्मन सचिन बर्मन के साज और संगीत पर फिल्म का नाम पेइंग गेस्ट, मेरे प्यारे सुनो वालों पेइंग गेस्ट। एक फिल्म है 1957 का निहतिन सीवनन फेफ्ट पोयो पोय नवा सिंह नोनी कबूर और निहतिन सीवनन फेफ्ट का ये मूवी सुबोध मुखर्जी का डायरेक्ट किया हुआ, जिसमें देवानंद साहब जी ने काम किया है नूटन जी के साथ सुबह होते। लेकिन मैंने फिल्म को देखा और शायद 2-3 बार देखा। ये फिल्म बहुत ही खूबसूरत है मेरे प्यारे सुनने वालों, और गाने जो ये मूवी में है सभी बेमिसाल लाजवाब। पेइंग गेस्ट ब्यूटीफुल मूवी विद ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सुनने वालों, और आप सुन रहे हैं बैक टू द फ्यूचर। उजाला रेडियो के स्टूडियो रोहतांग से एकदम लाइव एंड डायरेक्ट मैं रतन राम दुलारे पांडे जो पेश कर रहे हैं हर एक बुधवार के रात्रि को 6 से 9 बजे देवानंद साहब जी के मूवी से निकालकर नगमाए आज 5वीं बार आपका दिल बहला रहा हूं। तो बस यही उम्मीद और आशा के साथ कि आप सभी भी भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। 12 मिनट गुजर चुके हैं इस वक्त 8 बजकर, जबकि हम आपको ले चलेंगे अगले गीत की ओर। फिल्म का नाम बंबई का बाबू, और ये 1907 का फिल्म है निहतिन सेस्तक। एक नगमा दर्द भरा मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ, और जिसका संगीतकार है एस टी बर्मन सचिन देव बर्मन। रफी साहब जी की आवाज के साथ ही ना कोई मंजिल दिया है ना कोई महफिल, पेश करता हूं।

थी ना कोई मंजिल, दिया है ना कोई महफिल। रफी साहब जी की आवाज। मेरे प्यारे सुनने वालों, आप सभी ने ये डट भरे गीत सुने हैं, मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ, वो भी सचिन देव बर्मन के साज और संगीत पर। बंबई का बाबू फिल्म का नाम, और ये फिल्म 1907 का है। मीहदीन सिस्सख, राज खोसला जी का प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया हुआ मूवी। देवानंद साहब जी और सुचित्रा सेन का एक फिल्म है, जिसमें रशीद खान भी है, नजीर हुसैन, अंशला सखदेव, जगदीश राज और जीवन साहब जी और धूमल। स्वागरी दो हमारे सुन रहे हैं भी प्रोग्राम, हंस लक्ष्मण सिंह जी एट सुतमेर, दंकीवाल स्वाग हंस लक्ष्मण सिंह जी एट सुतमेर चुन करने के लिए और आपके ऐप के लिए। और स्वागरी सरवन नाय जी भी सुन रहे हैं प्रोग्राम लाइव डॉट अप में, तो आपको भी दंकीवाल हम कहते हैं चुन करने के लिए और आपके ऐप के लिए। एंजॉय द सॉन्ग्स, देवानंद साहब जी के नगमाएं हम चला रहे हैं, और क्या कहूं, एंजॉय। धीरे धीरे चल चांद गगन में, हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ गीत, रोमांटिक सॉन्ग। मेरे प्यारे सुनो वालों, रफी साहब जी और लता जी जो मिलकर गाएंगे शंकर जयकिशन के साज और संगीत पर। फिल्म का नाम लव मैरिज, और ये फिल्म जो है 1959 का है, नीहतीन है।

धीरे धीरे चल चांद गगन में, कहीं ढल ना जाए ये रात। खूबसूरत गीत है मेरे प्यारे सुनो, रोमांटिक सॉन्ग हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ, जो मिलकर गाए हैं लता जी और रफी साहब जी, और वो भी शंकर जय किशन की साज और संगीत पर। फिल्म का नाम लव मैरिज मेरे प्यारे सुनो वालों, ये फिल्म लव मैरिज नेहती नेहनन फाइव तक का है। 1959 सुबोध मुखर्जी का डायरेक्ट किया हुआ, देवानंद साहब जी, माला सिन्हा, हेलन, अभी भट्टाचार्य, इन सभी का एक फिल्म है। हम द 50s में हैं और अभी कुछ गाने और भी 50s का हम आपको सुनाएंगे, और या धीरे धीरे हम तो बढ़ रहे हैं 9 बजे की ओर, अगर वक्त रहा तो हम कुछ द 70s के भी सुनाएंगे, लेकिन देखते हैं कैसे प्रोग्राम आगे चल रहे हैं। है अपना दिल तो आवारा, न जाने ये दिल किस पे आएगा। ब्यूटीफुल रोमांटिक छेड़छाड़ सॉन्ग, मजरू सुल्तानपुरी जी इनका लिखा हुआ, दादा हेमंत कुमार जी गीत गाकर सुनाएंगे, और वो भी सचिन देव बर्मन के साथ और संगीत पर। सोलवा साल फिल्म का नाम, सोलवा साल 1958 का मूवी है। हियर ऑन यू आर बैक टू द फ्यूचर में देवानंद जी के 5वीं प्रोग्राम जो हम सजा रहे हैं, इन पर पिक्चराइज किया गया ये खूबसूरत गीत पेश करने जा रहा हूं।

है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे वो आएगा। दादा हेमंत कुमार जी की आवाज, मेरे प्यारे सुनो, मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ गीत इन्होंने गाकर सुनाए हैं, वो भी सचिन देव बर्मन के साज और संगीत पर। 1958 का मूवी फिल्म सोलवासा से हमने नगमा को निकाले। ये फिल्म सोलवासा का डायरेक्टर राज खोसला जी, देवानंद वहीदा रहमान का एक मूवी है।

Ja, daar ben ik weer terug. एक गीत जो हम पेश करने चाहते हैं वो गीत मैं देख रहा हूं चल नहीं रहा, तो मैंने सोचा क्यों ना एक और गीत हम चून करें। हम द 50s में है मेरे प्यारे सुनवालों और देवानंद साहब जी के नगमाए इन पर पिक्चराइज किया गया हम निकाल रहे हैं मूवी से और आप तक पेश कर रहे हैं। अगले मूवी का नाम है पतिता, मेरे प्यारे सुनवालों पतिता 1953 का मूवी है, 1953 है। सबसे मधुर वो गीत, गीत का टाइटल है, शैलेंद्र जी का लिखा हुआ नगमा है और शैलेंद्र जी का लिखा हुआ ये नगमा एक धड़भरा गीत है। द मैन विद द गोल्डन वॉइस ऑफ इंडिया, तलत महमूद जी की आवाज, शंकर जयकिशन संगीतकार है। पेश करता हूँ ब्यूटीफुल धड़भरा नगमा।

गीत द मैन विद द गोल्डन वॉइस ऑफ इंडिया तलत महमूद जी शैलेंद्र जी का लिखा हुआ ये डर्ट भरा गीत इन्होंने गाकर सुनाए है और वो भी शंकर जयकिशन की साझ और संगीत पर फिल्म का नाम पतीता मेरे प्यारे सुनने वालों 1953 का मूवी है नीघंटी द्रियन फेफ्टर डायरेक्टर फिल्म अमैया चक्रवर्ती देवानंद साहेब जी उषा किरण द ग्रेट आगा साहेब जी ललिता पावर इंदु शिवराज इन सभी का फिल्म है। रोहिणी कल्लू रतनाम में प्रोग्राम से जोड़े हुए हैं तो रोहिणी कल्लू जी को हम कहेंगे धन्यवाद आपके ऐप के लिए। एंजॉय यू आर एंजॉय बैक टू द फ्यूचर और खास करके देवानंद साहब जी के नगमाएं आपके ऐप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये रात ये चांदनी फिर कहां सुन जा दिल की दास्तां हमारे प्रिय सही लुधियानवी जी का लिखा हुआ रोमांटिक सॉन्ग पेश करने जा रहा हूं हियर ऑन यू आर सचिन देव बर्मन के साज और संगीत पर एस ए बर्मन के साज और संगीत पर दादा हेमंत कुमार जी और लता जी की आवाजें फिल्म का नाम जाल मेरे प्यारे सुनने वालों जाल 1952 का मूवी है नीघंटी 53।

ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। दादा हेमंत कुमार जी और लता जी की आवाजें, हमारे प्रिय सही लुधियानवी जी का लिखा हुआ रोमांटिक सॉन्ग दोनों ने मिलकर गाए हैं। सचिन देव बर्मन एस दे बर्मन के साथ और संगीत पर फिल्म का नाम जाल। मेरे प्यारे सुनो वालों, 1952 का ये मूवी है। फिल्म का डायरेक्टर गुरुदत्त साहब जी और देवानंद गीता बाली केन सिंह का एक फिल्म है। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं मेरे प्यारे सुनो वालों इस प्रोग्राम के एंड की ओर। एक गीत रफी साहब जी, मुकेश जी और हेमलता का आप तक हम पेश करेंगे। आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की साज और संगीत पर ये तीनों मिलकर गीत गाएंगे। फिल्म का नाम जाने मन, इतनी हदीन सेशन से ही फटा।

इस मुलाकात का बस मजा लीजिए। हिमलता द हार्ट ऑफ मिलियंस, मायती मुकेश जी और रफी साहब जी का ये नगमा आनंद बख्शी जी ने लिखे हैं और तीनों ने मिलकर गाए हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज और संगीत पर जाने मन फिल्म का नाम मेरे प्यारे सुनवालो। फिल्म 1976 का, देवानंद प्रोड्यूसर और एक्टर ये फिल्म का, और चेतन आनंद इनके बड़े भाई फिल्म का डायरेक्टर। देवानंद साहब जी ने ये मूवी में काम किया है हेमालिनी जी के साथ, प्रेमनाथ भी है, पैंटल अजीत दुर्गा खोटे। इस घंटे का आखिरी गीत पेश करने जा रहा हूं मेरे प्यारे सुनने वालों, और इस आखिरी गीत के बाद हम यहां से रुखसत होंगे। देवानंद साहब जी के पांचवी प्रोग्राम हमने सजाए हैं, इनके मूवी से इन पर पिक्चराइज किया गया नगमाएं निकाल निकाल कर आज का प्लेलिस्ट सजा रखा था और गीत निकाल कर आप तक हमने पेश किए हैं। आखिरी गीत फ्रॉम द मूवी प्रेम शास्त्र, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत है। सॉरी दैट इज फन हीरा पन्ना, सॉरी हीरा पन्ना आनंद बख्शी जी ने लिखा, किशोर कुमार और लता जी का गाया हुआ गीत, आर डी बर्मन संगीतकार। हीरा पन्ना फिल्म नीखतीन फिरन से इवन तक का है मेरे प्यारे सुनने वालों, और देवानंद ने प्रोड्यूस डायरेक्ट और एक्ट किया है ये मूवी में राखी के साथ और सीनत अमान। पेश करता हूं गीत, इस गीत के बाद मेरे प्यारे सुनो रुखसत होंगे। आज साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेल। हम आप सभी से फिर मिलेंगे 17 तारीख जून को, रहा फूल तो फिर खिलेंगे और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज़, टेक केयर और रिमेम्बर आई लव यू ऑल, बाय।

0: दिल को छू जाने वाले गाने सिर्फ उजाला रेडियो पर।
1: फागुन फगुआ होई चैत ते सुबन फूली रहे, सावन में डर कृष्ण ही लोलना कुबरी संग झूम।

और गीत आप सुने फिल्म ब्रह्मचारी का मारदानु सनम, हाँ सनम के जरिए। एंड सुनने वालों अब उजाला रेडियो पर मोहम्मद रफी साहब फिल्म वारिस का गीत को लेकर के।

एंड एक बेशारा प्यार का मारा, मोहम्मद रफी साहब से आप गीत को सुने, फिल्म वारिस से निकाला हुआ मोईगाना तोख या मार। अब सुनिए एक और मोईगाना पेश है एंड ओक मोहम्मद रफी मडन लता जी के साथ। उजाला रेडियो है ये, तू जाने है तोख।

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फियांदेवी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो।